0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल
2: बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: साह्रै मिठो कुरो सम्झायो हौ
1: साइला। अब अहिले थरी थरीका चिसो थरी थरीका खोला खोइ बता गयो धारा बता गयो खोला।
0: त्यो बोतलको पानी न त पुरा आँप भिज्ने न त पुरा तिर्खै मेट्ने।